0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Hin, Penawar.
1: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।